में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गरे, मोनपा में उद्घोषक श्री धूपधन टशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कर्मो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

0: energetic West Bengal, Bihar and Jharkhand till Sunday. The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland this evening. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the Games. It will feature just 10 sports, 9 fewer than at Birmingham in 2022, with competitions spread across 4 venues with an 8-mile corridor. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. The Indian contingent comprises 125 members, including para-athletics. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for persons involved in paper leaks. Prime Minister Narendra Modi assures that protecting students' future remains government's top priority. Government ready to discuss any issue, including NEET, in Parliament, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening, 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही

0: ही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, सदन ऐसे बाधित करेंगे यह ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्र ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने

0: सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
1: ऑपोजिशन ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी रिमेंस।
2: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
1: इज रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू

0: महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजी श्रोतव अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद हिंदी भक्ति गीत। डीजी श्रोताओं पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओ, इसी भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: यार प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। निजी श्रोताओ, अब प्रस्तुत है अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। अलग अलग प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए गायक भूपेन हजारिका से बंगला आधुनिक गीत। निजी श्रोताओ, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद बंगला आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गायक भूपेन हजारिका से चंद बंगला आधुनिक गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। समय दोपहर के 3:23 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम महिला मंच। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए वन स्टॉप सेंटर तवंग के एडवोकेट सोनम जंगमू केस वर्कर के साथ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार 2009, किशोर

0: अधिनियम 2015 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर भेंट वार्ता। भेंट करता है मिस दर्शी ट्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारे साप्ताहिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सुनम साहू जी। तो सुनम जी, आपका सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ।
2: आपको भी नमस्कार
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आज के विशेष मेहमान है एडवोकेट सुनम साहू, तो जाहिर सी बात है कि आज हम अधिनियमों पर ही चर्चा करेंगे और कार्यक्रम का नाम ही कार्यक्रम महिला मंच है, तो इसमें हम महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए कई सारे अधिनियमों पर बात करेंगे। तो सुनम जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या घरेलू हिंसा, आप हमें बताइए कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और घरेलू हिंसा कितने तरह के होते हैं?
2: जी शुक्रिया। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस हम उसे कहते हैं जो हिंसा घर के चार दीवारों के अंदर होता है ना। एक छत के नीचे में जितने भी आदमी रहते हैं, जैसे कि एक महिला एक दूसरे घर में शादी करके जाते हैं तो उसका पति का परिवार हो गया, या फिर वो अपने घर में जो अपने माँ बाप भाई बहन या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो अंकल आंटी जिसके साथ भी रहते हैं, तो मतलब एक घर के अंदर में जो हिंसा होता है उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं या घरेलू हिंसा कहते हैं। और घरेलू हिंसा के हमारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में पांच टाइप्स दिया गया है, फाइव टाइप्स। तो पहला है फिजिकल एब्यूज, दूसरा है इमोशनल एब्यूज, तीसरा है सोशल एब्यूज, चौथा है सेक्सुअल एब्यूज और लास्ट इकोनॉमिक एब्यूज। तो मैं इसको थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी। फिजिकल एब्यूज हम किसे कहते हैं, जैसे नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि मतलब फिजिकल मतलब आपको मारना पीटना, उसको हम फिजिकल एब्यूज कहते हैं। और वो दिखाई भी देता है अगर किसी के साथ फिजिकल एब्यूज हुआ है तो। मगर जब हम इमोशनल एब्यूज की बात करते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर विक्टिम को खाया जाता है ना, तो वो दूसरे टाइप होता है। फिर आता है आपका सोशल सोशल एब्यूज, मतलब मेनलैंड इंडिया में कई कई जगह पर जो बहुत ही अंदर रिमोट एरिया है वहां पर अभी तक भी ऐसे औरतें हैं जिसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो सोशल एब्यूज के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल एब्यूज ना। तो हमारे इंडिया में मैरिटल रेप को अभी तक क्राइम नहीं माना जाता है, तो अगर कोई हस्बैंड कोई किसी वाइफ को मैरिटल रेप करता है तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में उसको सेक्सुअल एब्यूज के अंदर में बुक कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज मतलब जिसे मैंने आपको कहा मेनलैंड इंडिया में कई सारी जगह है जहाँ पर अभी तक औरतों को अपना बैंक अकाउंट भी खोलने नहीं दिया गया है
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: इस तरह का मतलब सिचुएशंस है और उनको खर्चा पानी नहीं दिया जाता है, तो ये सब इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर में आता है।
1: तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं आते हैं बल्कि और भी बहुत सारे हिंसाएं आते हैं, जैसे यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा या कई तरह के और भी हिंसाएं हो सकते हैं। तो अगर किसी के साथ अगर ऐसी घटना या ऐसी हिंसा होते हैं, कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए?
2: जी, हमारे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी के साथ भी इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो अपने अपने जो पास के पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर तवांग है वहाँ जाके वो डायरेक्टली आके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम जब वो वन स्टॉप सेंटर में आते हैं तो फर्स्ट हम उनका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बाद में हम उनको जेएमएफसी कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां जाके डीएलएसए की मदद से उनको आगे की कार्रवाइयां किया जाता है।
1: क्योंकि हमारे समाज में लगभग शारीरिक रूप से जो हिंसा हुआ है उसी को ही सच माना जाता है, लेकिन अब सरकार ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं कि किसी भी तरह के हिंसा आपके साथ अगर होते हैं तो आप आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी ही घटना घटती है, अगर वो आकर आपके पास शिकायत दर्ज भी करते हैं तो सरकार की ओर से और उस पीड़ित महिला को क्या क्या रिलीफ्स मिलते हैं?
2: जी, जैसे मैंने आपको बताया जब हम अपने DIR को फॉरवर्ड करते हैं जेएमएफसी कोर्ट में, तो वहाँ पर जो भी जो लीगल एड क्लिनिक में एडवोकेट है वो उनको मदद करते हैं। तो उसके बाद में अकॉर्डिंगली मतलब उनका जो कितना सीवियर उनके साथ में वायलेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग में उनको रिलीफ दिया जाता है। तो फर्स्ट आपको रिलीफ में आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसमें जो औरतें होते हैं विक्टिम होते हैं

0: उनके जो एक्यूज होते हैं या रेस्पोंडेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है, तो वहां पर उनको वो फिजिकल वायलेंस या किसी भी तरह का जो फिजिकल वायलेंस या इकोनॉमिक वायलेंस जो भी है उसको रोक दिया जाता है। फिर सेकेंड आता है आपका रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होता है, आपका एक महिला को जब वो घर से निकाल दिया जाता है उसका हस्बैंड या किसी भी
1: कोई भी सदस्य
0: घर के सदस्य के द्वारा, तो वो रेसिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकता है।
1: अच्छा।
0: फिर आता है आपका मॉनिटरी रिलीफ। वहाँ पर अगर उनके साथ में मतलब मंथली मेंटेनेंस नहीं देता है या फिर इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो प्रे कर सकती है। फिर कस्टडी ऑर्डर तो मेनली बच्चों के लिए होता है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या कोई भी सदस्य किसी भी महिला के बच्चों को लेने के लिए करता है तो वो कस्टडी ऑर्डर के लिए मांग कर सकता है। और लास्ट है आपका कंपनसेशन ऑर्डर। तो इस एक्ट के अंदर में पीड़ित महिलाओं को कंपनसेशन भी दिया जाता है जो कि होता है फिजिकल वायलेंस या इमोशनल वायलेंस के लिए दिया जाता है।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट या हम जिसे पोश एक्ट 2013 भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैं और हमारे श्रोताएं जानना चाहेंगे कि पोश एक्ट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या जो ऑफिसेस में काम करते हैं वही महिलाएं आते हैं या फिर घर में जो काम करते हैं या घर में काम ही नहीं बल्कि किसी के घर में रहते भी है कोई, जब कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आते हैं तो उनके घर गांव में होते हैं, तो किसी रिश्तेदार के घर पर अगर वो रहती हैं तो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा जो हैरेसमेंट होते हैं तो क्या उन पर भी ये लागू होते हैं?
0: जी शुक्रिया। फर्स्ट में पोश एक्ट का फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी, POSH जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। तो यहाँ पर भले ही वर्कप्लेस सिर्फ लिखा है, ये एक्ट जो है जैसे आपने मुझे पूछा डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है कि नहीं, बिल्कुल ये एक्ट जो है डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनके लिए ये लागू होता है।
1: जैसे कि किसी के साथ ऐसी हिंसा या कोई हैरेसमेंट होते हैं तो अगर वो किसी को शिकायत दर्ज करना चाहे भी तो थोड़ी सी खुलकर नहीं बोल सकते हैं, तो अगर शिकायत दर्ज करना चाहे तो किस तरह से करेंगे?
0: तो इस एक्ट के अंदर में ये भी कहा गया है कि किसी भी ऑफिसेस ना किसी ऑफिसेस या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना है। तो उस कमिटी में आपका चार मेंबर होना है और उस चार में से मैक्सिमम नंबर जो है मतलब 50% से ज्यादा मेंबर जो होना है विमेन होना है, जो विमेन रिलेटेड वर्क करता है जो एनजीओस में है उनको वहां पर अपॉइंट करना है। और जो जो इंटरनल कमिटी में है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में है उनका नाम अपने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में उनको डिस्प्ले करना है ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको ये नॉलेज हो कि अगर उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो किसके पास जाके कंप्लेन करना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिसेस में होता है तो उनका उनका जो कंप्लेंट है फर्स्ट आपको आईसी मतलब इंटरनल कमिटी में जाके लॉन्च करना पड़ता है। फर्स्ट ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हुआ करता था लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन 2016 इसको सिर्फ इंटरनल कमिटी के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये कमिटी जो है सिर्फ कंप्लेंट तक ही सीमित नहीं है, इनका पावर इससे ज्यादा है, इसलिए अभी इनको हम इंटरनल कमिटी के नाम से जानते हैं। और अगर 10 से कम वाले जो ऑफिसेस है वो अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज में आपका लोकल कमिटी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अप्रोच करके वो अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
1: जी सोनम जी, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत ही कम ना के बराबर होते हैं, फिर भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना हमारे कर्तव्य है। और हर ऑफिस में चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो वहाँ पर एक इंटरनल कमिटी होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी हिंसा होते हैं हैरेसमेंट होते हैं तो वो सीधे जाकर अपनी शिकायत कर सके। और मैंने ये भी सुना कि शी बुक्स पोर्टल नामक एक वेबसाइट है, तो इस बारे में आप हमें बताएं।
0: आजकल ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करने से बाहर आने से उनको शाय फील होता है, घबराहट फील होता है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वहाँ में जो पीड़ित महिलाएं हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट सह रहे हैं अपने ऑफिसेस में वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। shebox.wcd.gov.in यहाँ पर जाके वो डायरेक्टली अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर से जो भी उनका कंसर्न ICC है या LC है लोकल कमेटी है

0: या इंटरनल कमेटी है वो अपनी कंप्लेन को टिकअप कर लेंगे।
1: जी जी, मतलब अगर किसी के साथ ऐसी हैरेसमेंट होते हैं तो वो बिना किसी दूसरों को बताए ही अपने लैपटॉप से या अपने ही कंप्यूटर से वो इस पोर्टल को टाइप करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं ना। और सनम जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसे कहते हैं और यह अधिनियम कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं?
0: जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो है बच्चों के लिए, ये एक एक्ट है जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। आपने निर्भया केस तो जरूर सुना होगा, जो घटना हुआ था निर्भया केस, तो उसमें आपको जानकारी होगा कि वहाँ पे एक एक्यूज जो है वो जुवेनाइल था, जिसके होते उस सीवियर पनिशमेंट इतना नहीं मिला था, जिसके वजह से भी इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। तो उस केस के बाद से अब जो बच्चे हैं, जो 16 to 18 ईयर्स के बच्चे हैं, अगर वो हीनेस क्राइम करता है, हीनेस क्राइम मतलब जो 7 ईयर्स से ज्यादा पनिशमेंट होता है जिसमें, अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे आपने हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा है, तो नॉर्मली ये बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में दो तरह का बच्चा आता है, एक है आपका CNCP और दूसरा है CCL। CNCP मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एंड CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ।
1: तो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ या फिर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है? और अगर किसी बच्चे से अपराध हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेंगे?
0: CNCP जैसे कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, और CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो 18 से नीचे बच्चे हैं वो अगर कोई क्राइम करता है तो उनको कहाँ पर, हम नॉर्मल कोर्ट में तो उनको हम लेकर नहीं जाएंगे, तो उनको हम लोग डील करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो इस एक्ट के अंदर में ही दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। तो उसमें 3 मेंबर होता है, एक होता है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जो हमेशा अब वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा JMFC मैम होता है यहाँ का, या सर होता है, वही प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है। फिर जो 2 बाकी मेंबर है वो किसी भी NGO का मेंबर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या फिर सोशल वर्कर हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर में देखा जाता है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो बच्चे होते हैं उनको जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होते हैं, जो डेस्टिट्यूट होते हैं, जिसका माँ बाप ने उसको अबेंडन कर दिया होते हुए भी, ऐसे तरह के बच्चे ना, तो उनको इसी एक्ट के अंदर में CWC ना, जैसे GGB दिया है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करके होता है, जहाँ पर एक चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं, वो लोग उनको देखभाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका माँ बाप होते हुए भी उसको नहीं देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, या फिर कोई बच्चा का कुछ आता पता नहीं है ना, और जो कोई बहुत ही पुअर फैमिली से या फिर ऐसे बिलोंग करता है, तो उनको CWC टेक केयर करते हैं।
1: जी, और जब हम बच्चों से संबंधित चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं साथ में ये भी जानूंगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए आप।
0: जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या होता है, आपका जो 6 to 14 ईयर्स का बच्चा होता है उसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने का बात करता है ये एक्ट। किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको हम एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, और किसी भी स्कूल, गवर्नमेंट रन स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को हम फीस नहीं ले सकते, किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकता है, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना है। और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनके लिए भी ये होता है इस एक्ट के अंदर में कि उनका जो 25% होता है, 25% जो होता है वो
1: छूट मिलेंगे।
0: जी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब रिजर्व होना चाहिए। तो मेनली ये एक्ट यही कहता है कि जो 6 to 14 ईयर से उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, भले ही अगर वो अपने एज से ज्यादा, किसी किसी का ऐसा होता है कि वो एज चला जाता है फिर वो उस क्लास में फिट नहीं होता है, तो वो कंसर्न स्कूल का ड्यूटी होता है कि उसको वो स्कूल में भर्ती कराना है, चाइल्ड स्पेशल नीड की तरह उनको ट्रीट करके उनको पढ़ाना है, उनके दूसरे जो बच्चे होते हैं उसके साथ में बराबर उनको लाना उनका ड्यूटी होता है।
1: जैसे कि अभी बाल मजदूर हमारे यहाँ पर तो बहुत ही कम होते हैं, आजकल हर कोई समझदार हो चुके हैं कि सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लाकर भी किसी के होटलों में या घरों में काम कराते हैं, हालांकि उनके माँ पिताजी के रजामंदी के साथ ही कराते हैं, फिर भी ऐसे बच्चे अगर 6 से 14 साल के बीच के निकले तो उन पर क्या ये कानून लागू है या नहीं?
0: जी, ये जो है 6 to 14

0: ईयर्स जो है वो सभी बच्चों के लिए इंडिया के सभी बच्चों के लिए उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। और अगर कोई व्यक्ति 6 या 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रखता है तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर उसको बुक किया जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कोई काम लगाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर में आता है। और चाइल्ड लेबर भी एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, तो हम बच्चों को अपने घर में भी काम नहीं लगा सकते हैं। किसी के बच्चे को अगर हम पढ़ाने लेके आते हैं तो उसको हम काम नहीं लगा सकते हैं, उनको पढ़ाना ही है 14 साल तक तो। हाँ, फिर अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, किसी भी अगर वो लोग दुकान चला रहा है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, वो उसका मम्मी पापा बिजनेसमैन है तो वहां पर वो थोड़ा उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी स्कूल आवर्स में करना मना है। उनके वेकेशन में हो गया, फिर अपने स्कूल छुट्टी होने के बाद आधा घंटा एक घंटा के लिए वो थोड़ा मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लाइट काम, हैवी काम उनको नहीं दे सकते हैं। और जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं, जो मतलब 19 इयर्स ना, जो 14 to 19 होते हैं, उनको हम हल्का हल्का अपने जो घर का दुकान हो गया जिसे मैंने आपको बताया ना, उन सब चीजों में वो मदद कर सकते हैं। बाकी 14 से नीचे 6 वर्ष तक हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का काम में जो चाइल्ड लेबर जैसे दिखता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट में मतलब किस किस एरिया में हम काम नहीं करा सकते वो लिस्ट भी दिया गया है। जैसे आपका फैक्ट्री वर्क हो गया ना, तो फैक्ट्रीज वगैरह में बच्चों को हम काम में नहीं लगा सकते हैं।
1: जैसे कि हमने कार्यक्रम में पहले चर्चा किए थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड ही कहते हैं, तो मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कई बार देखा है कि घर के बड़े या फिर कोई रिश्तेदार किसी भी छोटे बच्चे को शराब की दुकान में शराब खरीदने के लिए भेज देते हैं, या फिर किसी भी दुकान में तंबाकू से बने चीजों को खरीदने के लिए भेज देते हैं। तो उस समय क्या है ना, वो बच्चे के जो बहुत ही नाजुक समय होते हैं जीवन के, तो ये कहाँ तक सही है इस तरह के काम बच्चों को लगाना, और आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप एक एडवोकेट होने के नाते?
0: जी, ये फिर आपका अलग कानून है जिसको हम कोटपा एक्ट कहते हैं।
1: अच्छा।
0: देखिए, जब एक बच्चे को तंबाकू या फिर शराब कोई खरीदने बेचता है तो वो ऑब्वियसली बच्चा खुद का तो नहीं होगा, उनके खुद का कोई बड़ा ही उनको खरीदने बेचता है, तो इससे क्या होता है, ये तो मतलब कानूनी अपराध है। उसके ऊपर में अगर हम बच्चों को अगर ऐसे कुछ चीज खरीदने बेचते हैं तो उनको अगर इस चीज का ज्ञान नहीं होने से भी ज्ञान आ जाता है, मतलब इसे सीक्रेट कहते हैं या फिर इसे दारू के, वो ये जानने का मन हो जाता है, फिर वो ट्राई करते हैं, ऐसे करके बच्चों को भी मतलब बहुत खराब असर पड़ता है,
1: वो भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं,
0: गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो इसलिए जो घर के बड़े हैं वो खुद के लिए नहीं सोच के बच्चों के लिए सोच के एटलीस्ट बच्चों को ये सब चीज खरीदने नहीं बेचना चाहिए, वो कानूनी अपराध भी है ये। और जो बेचता है दुकानदार, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई तंबाकू या फिर कोई शराब खरीदते आता है तो उनको वो नहीं बेचना चाहिए।
1: जी जी जी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, तो आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने कीमती समय निकाल कर आए और हमें कई सारे महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए अधिनियमों के बारे में जानकारी दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वन स्टॉप सेंटर तवंग के एडवोकेट सोनम जंगमू केस वर्कर के साथ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार 2009, किशोर अन्याय अधिनियम 2015 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर भेंट वार्ता। भेंट करता थे मिस दर्शी ट्रमा। इसी के साथ ही कार्यक्रम महिला मंच अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो चुके हैं। डीजी श्रोतव हम आपके खिदमत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोतव, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी से, गायक अरिजीत सिंह के स्वर में, गीत कुणाल वर्मा के है व संगीत प्रसाद एस का।

श्रोताओं, गीतमंजरी कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए, वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर के स्वरों में फिल्म स्त्री 2 से। इस गीत की गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार सचिन जिगर।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, कुसार मुनीर द्वारा शब्द रचना पर फिल्म महाराज से गायक मोनाली ठाकुर के स्वर में। इस गीत के गीतकार है कुसार मुनीर तथा संगीतकार सोहेल सेन।

0: श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सुरमा से। दिलजीत दोसंझ के स्वर में गुलजार की रची इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
2: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म खेल खेल में से, विशाल मिश्रा और जरा एस खान की आवाजों में। कुमार की लिखी बोल पर इस गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओ, अभी आपने आनंद लिया फिल्म क्या यही प्यार है से यह गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। जसलीन रशीद के लिखे बोल पर इसे संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। श्रोताओ, कार्यक्रम को यू ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म सही यारा से, विशाल मिश्रा और हंसिका परीख के स्वरों में। राज शेहकर द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल मिश्रा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत पेश है जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाजों में, फिल्म दरक 2 से। ओजिल दलाल द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने।

0: श्रोताओ, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से ख्याल, तथा तबला पर संगत दे रहे हैं चतुर लाल ने। लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीमती श्रीदेश्वरी देवी से ख्याल तथा तबला पर संगत दे रहे थे चतुर लाल ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को और टीम अरुणाचल प्रदेश को जनसेवा के नेतृत्व के 10 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में नाहरलगन के प्राचीन कॉलोनी स्थित आबोतानी विद्यानिकेतन के पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए 2 लाख रुपए का चेक विद्यालय को सौंपा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए सभी पात्र नागरिकों से अपने विवरण का सत्यापन करने की अपील की। अपर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने हाल ही में मानसूनी बारिश के सड़कों और पुलों को हुए व्यापक नुकसान के कारण सड़क संपर्क से कटे नीलिंग लिंगदाम और अपर गिबा प्रशासनिक सर्कल में आवश्यक खाद्य सामग्री की हवाई आपूर्ति सफलतापूर्वक शुरू की। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू रहेगी। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह निर्णय छात्रों

0: हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक परीक्षा नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों के दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं?
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रही है और अपना रुख बदल रही है। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा है कि वे केवल अराजकता फैलाने चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास संबंधी प्राथमिकताओं, प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और टीम अरुणाचल प्रदेश को जन सेवा और नेतृत्व के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। उन्होंने सेवा आपके द्वार जैसी प्रमुख पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम ने सरकारी सेवाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाकर जन सेवा प्रणाली में परिवर्तन लाया है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ा है और समाज सेवी विकास में मजबूती मिली है। राज्यपाल ने ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवा वितरण के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की भी प्रशंसा की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में नाहरलगन के पाचिन कॉलोनी स्थित आबोतानी विद्या निकेतन के पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए 2 लाख रुपए का चेक विद्यालय को सौंपा है। राज्यपाल ने 28 जून 2026 को विद्यालय के दौरे के दौरान पुस्तकालय के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु इस वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि पुस्तकें युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अरुणाचल शिक्षा विकास समिति ASVS द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार के प्रयासों की सराहना करते हुए आबोतानी विद्या निकेतन की शैक्षणिक उत्कृष्टता और चरित्र निर्माण में प्रतिबद्धता की प्रशंसा भी की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। राज्य के कुल 8,87,505 प्राकृतिक मतदाताओं में से 7,18,046 मतदाताओं ने 14 जुलाई तक गणना पत्र जमा की थी, जबकि स्थानांतरण, मृत्यु अथवा अनुपस्थिति के कारण 1,69,400

0: 59 प्रपत्र एकत्रित नहीं की जा सकी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए सभी पात्र नागरिकों से अपने विवरण का सत्यापन करने तथा आगामी 20 अगस्त 2026 तक खुले दावे और आपत्तियों की अवधि का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आग्रह किया। अपर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने हाल ही में मॉनसून बारिश से सड़कों और पुलों को हुए नुकसान के कारण संपर्क से कटे निगलिंग, लिंगदाम और अपर गिबा प्रशासनिक सर्कल की आवश्यक खाद्य सामग्री की हवाई आपूर्ति सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य प्रभावित समुदायों तक आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारी वर्षा के बाद न्यू और जाव नदियों के कटाव के कारण निलिंग और अपर गिबा सर्कल को जोड़ने वाली सड़कें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जबकि जाव नदी पर बना पुल बह जाने से अपर गिबा के 22 गांव जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिए बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह से सदस्यों के साथ मुलाकात भी का कार्यक्रम भी है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रिया बादु। Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and assert that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and the future of the youth in the country. His statement comes amid ongoing student protest at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of their youth will not be spared. Mr. Modi added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interest of students. Union Home Minister Amit Shah has hailed Prime Minister Narendra Modi's decision to expedite hearings and take stringent actions against the guilty in paper leak cases through the establishment of fast-track courts. In a social media post, he said the welfare of the youth and the bright future is both the highest priority and the resolve of the Modi government. Underlining the Prime Minister's commitment towards youth, Mr. Shah said, "This decision is against those who toy with the future of the youth due to paper leaks and will prove to be a milestone." National Democratic Alliance and opposition MPs today held a protest at Makar Dwar inside Parliament premises. NDA MPs emphasized a discussion on the NEET paper leak issue in the House, while opposition MPs demanded the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. BJP President and Rajya Sabha MP Nitin Nabin said the NDA government is fully prepared to discuss the future of the students and youth at every level. Speaking to reporters, Mr. Nabin said that leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi and the entire opposition are shying away from the discussion in the House. Congress leader Priyanka Gandhi Vadra said the government should listen to the demands of students. Speaking to reporters at Parliament premises, she said the students are seeking the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan and action against those responsible for allegedly using force against them during the protest. She also urged the Prime Minister to initiate a direct dialogue with the students. Delhi Police has debunked the report circulating on social media claiming the death of a female during the protest at the Jantar Mantar in New Delhi. In a social media post, the police

선인의 다 우숙시우치 페이슬 아슈르 시뉴루 딩딕 삼사나사

尊敬的吴主席，这些边嘛，您不落上那些，例如定的生产上。

所以呢，他我这个手机并没这些人，眼睛他们那些牛肉，顶着什么什么色。

Miriam Viv 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम जरूखा से पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। उपायुक्त तवांग जिला के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार जिला प्रशासन तवांग द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तवांग नगर पंचायत के प्रस्तावित अधिकार क्षेत्र के संबंध में जनता द्वारा उठाई गई शंकाओं एवं आपत्तियों पर प्रशासन ने आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। प्रशासन स्पष्ट करता है कि तवांग मठ की विरासत, धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक प्रथाएं तथा पारंपरिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूमि के वृद्ध स्वामित्व एवं सामुदायिक अधिकार भी यथावत बने रहेंगे। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रमाण पत्र तथा अन्य सरकारी दस्तावेज पहले की तरह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाते रहेंगे। नगर पंचायत का उद्देश्य तवांग के बढ़ते शहर विकास, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, पर्यावरण संरक्षण तथा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संबंधित पात्रता एवं सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार मिलता रहेगा। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें तथा केवल सरकार द्वारा जारी आधिकारिक

सूचनाओं पर ही भरोसा करें। तवंग जिला प्रशासन आश्वासन करता है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी निष्पक्ष एवं कानून के अनुसार संचालित की जाएगी तथा जनता की सभी वास्तविक चिंताओं पर उचित विचार किया जाएगा। सूचना समाप्त हुआ। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम चरोखा। कार्यक्रम चरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम जेदुन लेरिम के अंतर्गत तवंग मठ के पूर्व लोपन लामा सोंगी से लामा छुगा 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर। शाम के 7:10 पर सुनेगा मन्युल विद्या निकेतन तवंग के 5वीं कक्षा के छात्र मिस वैष्णवी राज थापा से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक रहेगा वाटरिंग टाइम। आज शाम के 7:11 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक और अनेक। इसके अंतर्गत आप सुनिए गायक शान और अन्य गायक कलाकारों के स्वरों में फिल्म 3 इडियट्स से शान और शांतनु मैत्रा, फिल्म पीके से शान और श्रेया घोषाल, फिल्म हम तुम से शान और अलका याग्निक, फिल्म ओम शांति ओम से शान उदित नारायण और श्रेया घोषाल, फिल्म है बेबे से शान सोनू निगम और शांतनु मोइत्रा, और फिल्म जब वे मेट से शान और उदित नारायण के आवाजों में चंद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर आने लीजिएगा फिल्म खेले हम जी जान से सोहेल सेन और साथियों के आवाजों में एक देशभक्ति गीत। आज रात 8:00 का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 सुनेंगे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 24 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारे सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2:00 मिडडे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30 पर सुनिएगा भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। 3:00 विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दोपहर के 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर के 3:50 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। कल शाम के 4:30 पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम के 5:30 पर आप सुनिएगा दैनिक मुख्य सूचना मुनबा में श्री थुपतन टाशी से। शाम के 5:35 पर सुनिएगा कुंसिल। शाम के

미라 미마 이마 다예바 남바여 지게르 하와나데 마젠보 담바 심제 담지게 담지게 담바 소바

Ben de dağla bodi sandım.

三遍你妈回东边儿呗。

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता

0: level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan. Several MOUs will be signed after the talks. The President of Romania and the First Lady will host a state dinner in the honour of President Murmu tonight. The 23rd Commonwealth Games CWG will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalist Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lavlina Borgohai are set to represent India at the CWG 2026. In men's cricket, Zimbabwe have set a target of 126 runs against India in first T20 international of the three-match series in Harare. In reply, India was 68 for 2 in 6.2 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Zimbabwe posted 125 runs for the loss of 7 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम आज की कविता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए मोनिल विद्या निकेतन तवांग के 5वीं कक्षा की छात्र मिस वैष्णवी राज थापा से एक अंग्रेजी में कविता। कविता का शीर्षक है ए वाटरिंग टाइम।
2: Like everyone, my name is Vaishnavi Raj Thapa. My school name is Monya Vidyaniketan Tawang. I study in class 5. Title of my poem is A Watering Rhyme. A watering rhyme. Early in the morning or the evening hours are the times to water every kind of flowers. Watering at the noonday when the sun is high does not help the flowers, only make them cry. Pierre Robs. Thank you.
1: Shrutav, abhi aap sun rahe the मोनिल विद्या निकेतन तवंग के 5वीं कक्षा की छात्र मिस वैष्णवी राज थापा से एक अंग्रेजी में कविता। कविता का शीर्षक था ए वाटरिंग टाइम। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम में आज आप सुने गायक शान और अन्य गायक कलाकारों द्वारा चंद नगमे। तो आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा पेश है फिल्म थ्री इडियट्स से। शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में गीत स्वनन किरकिरे के है व संगीत शांतनु मोइत्रा का।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म पीके से यह गीत श्यान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। स्वनंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत दिया था शांतनु मैत्रा ने। श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म हम तुम से, शान और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। प्रसून जोशी द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

0: आज बहुत काम
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to
0: you। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening to you।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with her।
0: तो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत पेश है उदित नारायण, श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन के आवाजों में, फिल्म ओम शांति ओम से। जावेद अख्तर द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म हे बेबे से। शान, सोनू निगम और शंकर महादेवन के आवाजों में, गीत समीर के है व संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है फिल्म जब वी मेट से, शान और उस्ताद सुल्तान खान के स्वरों में। गीतकार है इरशाद कमिल तथा संगीतकार प्रीतम।

वी मेट केसी गीत के साथ ही कार्यक्रम एक और अनेक अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल दोषियों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा छात्रों के भविष्य की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। उनका यह बयान नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के जारी प्रदर्शन को बीच आया हुआ है। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में नाहरलगन के प्राचीन कॉलोनी स्थित आबोतानी विद्यानिकेतन के पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए 2 लाख रुपए का चेक विद्यालय को सौंपा है। राज्यपाल ने 28 जून 2026 को विद्यालय के दौरे के दौरान पुस्तकालय के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु और इस वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि पुस्तकें युवाओं के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के अनुशासन, उत्साह और बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति की भी सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनकर राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास संबंधी प्राथमिकताओं, प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और टीम अरुणाचल प्रदेश को जनसेवा और नेतृत्व के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। उन्होंने सेवा आपके द्वार जैसी प्रमुख पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम ने सरकारी सेवाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाकर जनसेवा प्रणाली में परिवर्तन लाया है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ा है और समावेशी विकास को मजबूती मिली। राज्यपाल ने ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवा वितरण के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की भी प्रशंसा की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। राज्य के कुल 8,87,550 पंजीकृत मतदाताओं में से 7,18,046 मतदाताओं ने 14 जुलाई तक गणना प्रपत्र जमा किए, जबकि स्थानांतरण, मृत्यु अथवा अनुपस्थिति के कारण 1,69,459 प्रपत्र एकत्रित नहीं किए जा सके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए सभी पात्र नागरिकों से अपने विवरण का सत्यापन करने तथा आगामी 20 अगस्त 2026 तक खुले दावे और आपत्तियों की अवधि का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधिवत प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, ECI नेट ऐप तथा स्थानीय बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध है। शिक्षा मंत्री PD सोना ने आज शिओमी उपायुक्त, मेचुका के अतिरिक्त उपायुक्त तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में एडवेंचर मेचुका और मेचुका ट्राउट क्वेस्ट 2.0 के आयोजन की तैयारी की समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, लॉजिस्टिक, सुरक्षा, आतिथ्य, आधारभूत संरचना तथा प्रचार प्रसार से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ICAR, IIVR वाराणसी के सहयोग से तवांग जिले के 7 गांवों में उच्च उपज देने वाली सब्जियों की किस्मों पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन तथा कृषि आदान वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम का समन्वय डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी, विषय विशेषज्ञ उद्यानिकी एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया गया। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रदान की। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों ईस्ट कमिंग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, क्रादादी, कमले, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए

0: and other theater enthusiasts from the state. The 23rd Commonwealth Games will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalist Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohai are set to represent India at the CWG 2026. That is all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुए हैं। लीजिए पेश है एक देशभक्ति गीत फिल्म खेले हम जी जान से सोहेल सेन और साथियों की आवाजों में। गीत जावेद अख्तर की है व संगीत सोहेल सेन का।

श्रोतव, इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। डीजी श्रोतव, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोतव, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है देरपतन गुजरात से दिराजवी रबरी। आपकी पसंद पर पेश है फिल्म फकीरा से यह गीत, लता मंगेशकर और रविंद्र जैन के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है रविंद्र जैन और इस गीत के बोल है दिल में तुझे बिठा के।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। यवतमाल वीरदव महाराष्ट्र से आप है, संतोष खट से और विनोद खट से। आप सबकी पसंद पर आइए सुनिए फिल्म ऐतराज से यह गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में। समीर द्वारा शब्दबद्ध पर इसे संगीत से सवारा है हिमेश रेशमिया ने, और इस गीत के बोल है वो तस्वीर का आलम।

श्रोताओ, इस वक्त आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत। मेहर नगर उम्र गीत महाराष्ट्र से आप है अभिजीत गुहनकर राही, मिसेस सरिता गुहनकर और प्रिंस एकांश गुहनकर और अखार हाइट्स बहादुर नागपुर से आप है सिद्धार्थ गवर्नकर, प्रणीता गवर्नकर और लाडला टुकटुक गवर्नकर। आप सबकी पसंद पर आइए आने लेते हैं फिल्म मिलन से यह गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत निर्देशन पर आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इसे आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने पेश करने की गुजारिश की है। जलालाबाद वेस्ट से आप हैं सुरेश गगनेज, पूनम गगनेज, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। आप स

सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म ब्लैक मेल से यह गीत, गायक किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के बोल है पल पल दिल के पास।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश के लिए हमें संदेश लिख भेजा है आप है मंडरलिंग तवंग से तेंसिन टोलकर सर्गी रिपा और गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल तवंग से आप है श्यामसुन अंसारी, संगे सोमो, येशी छोटन, उर्गिन सोमो, केसंग लामो, कुंचो डोलमा, श्रिंग यांगजुम, श्रिंग छोकी, तेंजिन पेमा, पेमा यांगजुम, निमल हामो, टाशी यांगचिन, सेपल जंगमो, श्रिंग छोटन, श्रिंग डोंडुप, लोपसंग तोपतेन, टाशी श्रिंग और टाशी वंगबो। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म दो राहक से या गीत मेहदी हसन के स्वर में। मसरूर अनवर के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है सोहेल राणा ने। इस गीत के बोल है मुझे तुम नजर से गिरा।

ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्म गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वजह फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस शो की महफिल में

0: शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे न्यूज एट 9।
1: एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला, भारत के लिए पदक सुनिश्चित। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर पहला T20 मुकाबला

0: सिंधिया तथा रात्रि के ठीक 9 बजे न्यूज एट 9।
1: एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला, भारत के लिए पदक सुनिश्चित। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर पहला T20 मुकाबला अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली। आगामी टेस्ट क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीता। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लियाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना को बाय मिला, जिसके माध्यम से उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत ने अपना पहला पदक सुनिश्चित कर लिया है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला है। इस बाय के जरिए उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन बाय मिलने के बाद महिलाओं के 75 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में सीधे पहुंची। ड्रॉ में सिर्फ 5 एथलीट थे, इसलिए लवलीना समेत 3 खिलाड़ी सीधे अंतिम 4 में पहुंच गए, जबकि बाकी 2 खिलाड़ियों को एकमात्र क्वार्टर फाइनल मैच खेलना था। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग नियमों के तहत सेमीफाइनल में हारने वाले सभी खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में ताफाकी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी, जहां स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाने का मौका होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा उन्होंने चीन के हंगझोऊ में हुए 2023 एशियाई खेलों में भी रजत पदक जीता। वहीं ओपनिंग सेरेमनी के लिए जब आज भारतीय दल शानदार कपड़ों में मैदान पर उतरेगा, तो लवलीना और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू फ्लैग और बैटन बेरर लेकर चलेंगी। मीराबाई चानू ने बेहतर प्रशिक्षण के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया।
3: एक तरफ से तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमको इतना सपोर्ट दिया है कि हम पहले ट्रेनिंग करना जो चाहते हैं, वैसे हम पहले से ही 25 डे हम बर्मिंगम में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो जो क्लाइमेट का एडजस्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है प्लेयर्स के लिए कि हमारे इंडिया में बहुत गर्म है, इधर आके हम ठंडा है, तो एक वीक या 2 वीक लग जाते हैं इसको एडजस्ट करने में। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे गवर्नमेंट को कि उन्होंने ही पहले हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा है।
1: मीराबाई ने कहा कि ये प्रतियोगिता एशियन गेम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
3: मेरे लिए तो काफी डिफिकल्ट हो रही है कि अभी मैं 48 में खेलूंगी, फिर 49 में खेलना है, पर फिलहाल अभी 48 के लिए मैं बॉडी वेट कंट्रोल करके रखना है और एशियन गेम्स के लिए भी मुझे प्रिपरेशन करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, पर मैं पूरा कोशिश करूंगी मेरे तरफ से जो भी है, पर बहुत पास में है, तो मैं अभी भी जो ट्रेनिंग चल रही है मैं एशियन गेम्स की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ।
1: उन्होंने कहा कि खिलाड़ी प्रेशर से पार पाकर पदक जीतना चाहते हैं।
3: प्रेशर है, पर हमको पूरा कोशिश करूंगी प्रेशर को साइड में रख के जो हमारी परफॉर्मेंस हमने करके आई है, इसको हमारी जो बेस है उसको स्टेज में लेके करने के लिए हम पूरा कोशिश करूंगी, तो ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो जरूर वेटलिफ्टिंग में सबका मतलब मेडल आ सकते हैं।
1: उधर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ग्लासगो में भारतीय सदस्यों के साथ साइकिलिंग रैली की अगुवाई की और भारतीयों से राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान चेयर फॉर इंडिया मुहिम में शामिल होने का अनुरोध किया। खेल मंत्री ने साइकिलिंग के महत्व के बारे में भी बताया।
4: भारतीय डायस्पोरा के द्वारा चेयर फॉर भारत करके हमारे साइकिलिंग से दुनिया को ग्लासगो से संदेश दिया कि फिटनेस दुनिया के हर नागरिक के लिए जरूरी है।
1: अब सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली।

0: तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी भारतीय टीम, लेकिन आज जिस प्रकार से नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए और गेंदबाजों ने कैसा किया प्रदर्शन आज?
1: जी प्रशांत, आज गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। आज अशोक शर्मा ने भारत के लिए डेब्यू किया है। हालांकि उनका आईपीएल प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था और भारत के लिए उन्होंने आज डेब्यू किया, तो उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले गए 10 मुकाबलों में उन्होंने 22 विकेट चटकाए थे और सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी पेस से प्रभावित किया था। इस आईपीएल में उन्होंने 154.2 की रफ्तार से गेंदबाजी करी थी। आज भी वो विकेटलेस रहे हैं, पर वी होप फॉर द बेस्ट कि हम देखेंगे अशोक शर्मा को कुछ अच्छा करते हुए। वहीं मयंक यादव ने 4 ओवर में आज 18 रन देकर 2 विकेट लिए और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
0: वहीं बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। वैभव सूर्यवंशी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, उनके दम पर उनको टीम में जगह मिली और आज धमाकेदार पारी भी खेला वैभव ने। कैसा रहा भारत का बल्लेबाजों का प्रदर्शन?
1: देखिए बल्लेबाजी क्रम की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा आज जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेली। 19 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। वैभव को यह मैदान बहुत ही ज्यादा रास आता है क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने यहां पर 175 रन की पारी खेली थी, जो सबको याद होगी। और उसके बाद ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 35 रन और वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों पर 28 रन। तो इंग्लैंड और आयरलैंड से हारने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ ये जीत भारतीय टीम को बहुत ही मनोबल प्रदान करेगी और आगे भी हम उनसे बेहतर प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारत ने पहला मुकाबला जीता है और उम्मीद करें कि 25 और 26 जुलाई को जो इस श्रृंखला का दूसरा और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, इसमें भी भारत जीत दर्ज करे और इस श्रृंखला को अपने नाम करे। उधर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप WTC 2027 का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में 9 से 13 जून के बीच खेला जाएगा। ऐसा दूसरी बार होगा जब ये मैदान चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट करेगा।
2: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की मेजबानी ओवल दूसरी बार करेगा। इससे पहले इसी मैदान पर वर्ष 2023 में यहां खिताबी मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। पिछले वर्ष आईसीसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ईसीबी को अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी के अधिकार मिले थे। WTC फाइनल के शुरुआती 3 संस्करण इंग्लैंड के अलग अलग वेन्यू पर आयोजित किए गए थे। लॉर्ड्स ने वर्ष 2025 का फाइनल होस्ट किया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी थी। न्यूजीलैंड ने साल 2021 में साउथहैम्पटन में भारत को 8 विकेट से हराकर पहला टाइटल जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में ओवल के मैदान पर 209 रन से जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी जीती थी। टेस्ट क्रिकेट के 150 वर्ष पूरे होने के कारण 2027 का संस्करण ऐतिहासिक होगा। ऑस्ट्रेलिया अभी WTC रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात कर लेते हैं स्क्वैश पर। अनहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में अनहत ने डॉयस ये सैन को शिकस्त दी। सुनते हैं सरफिरोजी की एक रिपोर्ट।
3: अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया की डाइस ये सैन ली को सीधे गेम में हराया। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत ने अपनी प्रतिद्वंदी को 11-4, 11-8 और 11-3 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मिस्र की 5-8 सीड खिलाड़ी हबीबा रिजक से होगा। महिला वर्ग के कई अन्य मुकाबले भी रोमांचक रहे। मिस्र की हबीबा रिजक ने अमेरिका की शार्लेट जे को 4 गेम के मुकाबले हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं बेल्जियम की सवाना मोक्सहैम ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से हराया। मिस्र की मलिका एलकाराक्सी ने अमेरिका की दिया यादव को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग में भी कई अहम मुकाबले खेले गए। टॉप सीड मोहम्मद जकारिया ने पाकिस्तान के नौमान खान को हराकर अगले दौर में जगह बनाई, तो फ्रांस के अमीर खालिद जोसेलिन ने इंग्लैंड के रॉनी हिकलिंग को सीधे गेम में हराया, जबकि हांगकांग की हेलेन टैंग ने मलेशिया की हार्लिन टैन को मात दी।

0: हालांकि पुरुष वर्ग में कुछ बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। भारत के आर्यवीर दीवान जो टूर्नामेंट में 5-8 सीड खिलाड़ी थे, उन्हें अमरीका के यासीन शलाबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अमरीकी खिलाड़ी ने आर्यवीर को 11-4, 11-1 और 11-5 से हराया। इसके अलावा ब्राजील की लॉरा सिल्वा को मलेशिया की विटनी विल्सन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वहीं सऊदी अरब के मोहम्मद अल नासफान ने इंग्लैंड के डायलन रॉबर्ट्स को 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: श्रोता, आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मुकाबले 20 से 25 जुलाई तक खेले जा रहे हैं। इसके बाद 26 से 31 जुलाई तक पुरुष और महिला टीम प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। भारतीय पुरुष टीम इस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ उतरेगी। पिछले वर्ष इस टीम ने काहिरा में टीम 13 वर्ष के बाद कांस्य पदक अपने नाम किया था। और अब बात शतरंज पर। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के चौथे संस्करण के सातवें और आखिरी राउंड में कल भारत के अर्जुन एरिगेसी के साथ मैच ड्रॉ कराने के बाद फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलरेजा फिरोजा चैंपियन बने। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: अलीरेजा फिरोजा को खिताब जीतने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत थी। 41 सालों के बाद मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ और फिरोजा ने 7 राउंड में 4.5 पॉइंट्स हासिल किए। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं गवाया। इस दौरान उन्होंने 2 जीत हासिल की और 5 मैच ड्रॉ खेले। अंतिम दौर में अलीरेजा फिरोजा के पास भारत के अर्जुन एरिगेसी और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दू सत्तरोव पर आधे अंक की बढ़त थी। खिताबी दौड़ निर्णायक रूप से फिरोजा के पक्ष में तब झुक गई जब अब्दू सत्तरोव रूस के दिमित्री आंद्रकिन के खिलाफ 47 शालों में हार गए। अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी के दौड़ से बाहर होने के बाद फिरोजा को एरिगेसी के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी। उन्होंने सुरक्षित रूप से खेल को रुक एंड पॉन एंड गेम तक पहुंचाया और फिर पॉइंट बांट कर खिताब अपने नाम कर लिया। आंद्रकिन ने इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गवाया। वहीं अर्जुन एरिगेसी के साथ 4 पॉइंट्स पर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। अब्दू सत्तरोव ने भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन और एम प्रणेश के साथ चौथा स्थान साझा किया। तीनों ने 3.5 पॉइंट्स हासिल किए। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: श्रोता, आपको बता दें कि मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा। 7 में से 3 गेम हारने के बाद वे 2 पॉइंट के साथ स्टैंडिंग में सबसे नीचे रहे। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी की हार के साथ भारतीय खिलाड़ियों का सफर आज समाप्त हो गया। पीवी सिंधु शुरुआती बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही और चीन की खिलाड़ी चेन यूफेई से 3 गेम के कड़े मुकाबले में 21-16, 20-22 और 18-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य कनाडा के विक्टर लाई के खिलाफ 21-19, 21-11 से, जबकि आयुष शेट्टी आयरलैंड के नेट ग्वेन से 15-21, 21-13 और 22-20 से हार गए। और अब बात निशानेबाजी पर। ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन कल पुरुष 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लियाऊ ने स्वर्ण पदक जीता। चीन के ही झांग चांगहोंग ने रजत पदक पर निशाना साधा। सेंग ने क्वालिफिकेशन राउंड में 637.5 पॉइंट के साथ टॉप किया और फाइनल में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। स्वीडन के विक्टर लिंक ग्रेन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। हांगझोउ निशानेबाजी विश्व कप 28 जुलाई तक खेला जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने

धारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र, बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है।

0: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue.

दोपहर के 3:50 पर, शाम के 7:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे। रात के ठीक 8 बजे का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9। श्रोताओ कल हम फिर हाजिर होंगे दोपहर के ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमू, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता